असा महला चौथा जन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन्हार नाम धरावै राम राजे तिसकी तृष्णा पुख।

एक नहीं चाकरी जित पकसना जाए नानक सेवकांडी है जैसे ती खसम समाए पौड़ी नाक अंतर जापनी।

0: मशक्कत का नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समरकै गुरु नानक लय त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय। अर जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जस डठ सब दुख जाय। तेग बहादुर।

रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शबद चौंकी आसा दी वार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरुप्रसाद चक्र चेहन अरवर्ण जात अरपात नहन जे रूप रंग अर रेख पे को कहन सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित उज कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सहान गणिज जाय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर

नेत नेत गण तृण कहत त सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कण हर बूंद बसों रुमावल कुसुम बसंत गणांतन आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कव जन भल उन्ह जुगावै भले अमरदास गुण तेरे

गुर का शब्द पछाना सेखा चौ चकिया चौ बाया एह मन एकत घर आना एहड़ छड तू गुर का शब्द पछाना सतगुर अग्गा ढह पाओ

पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरा वास तेरा घर फला तेरा खर आनंद वधाई थुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला परपूर सर्व कला।

माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे तरम हतूर करमिया पोया पुनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मस

0: जिया अंदर जियो सब किछे जान ला, सब के तेरे वस तेरा घर पला, तेरा घर आनंद वधाए तुद घर, माण महता तेज अपना आप जार, सर्व कला भरपूर देश है जगता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पमन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत।

दुख दारू सुख रोग पे आ जा सुख कामना होई, तू करता करना में नाही जाहो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वसे आंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता कलकला पर पूर रहे।

राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास।

जय सतगुरु सिमरंत नयन के तिमर मिटहै खिन, जय सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंथ जीव की तप्त मिटावै, जे सतगुर सिमरंथ रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै, सोई रामदास गुर बल पाण, मिल संगत धन धन करहो, जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो। गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग, नाम दियो मन लीना, हड दाम को शिपरो होयो लखीना, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा पयो गुनिय गहीरा, रवदास टोअंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हिरदय वस्या पार ब्रह्म भगता मैं गनिया, ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜਾਟਰ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना, जिन नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परि एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सोत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई।

मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार, कड़ भांडे इटां कियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़।

पावड़ी तुरकरम जिना को तुद पाया तिनी खसम ते आया पावड़ी पड़या होवे गुनहगार तो मी साध न मारी है जेहा काले खलना ते वेहो नाव बचारी।

0: तित नाम लाग ते तीस ते आवे जतीत पीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गरु मत सतकर संगत उद्रिया सोई नाम अचल भगते पवतारण अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार किरण रब सुरतर साखे उत्तर दखन पुब देश पश्चिम जस पाखे जन्म तैस क्यथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पवजल हरन गुर अमरदास तै पायो पलो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पवजल हरन गुर अमरदास तै पायो।
1: नाम त्यावें देव तेतीस और साधक सिद्ध नार नाम खंड ब्रह्मांड तारे जह नाम समादेओ हर सोग समकर सहारे नाम श्रोमण सर्व में

0: भगत उच्चर अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायो।
1: चरण तप परस के अथ चरण गुर अमर पवलरा हथ तप परस के अथ हथ लगा गुर अमर पै जिह तप परस के अथ जिह गुर अमर पनीजा नैन तप परस के अथ नैन गुर अमर पखीजा सरन तप परस के अथ सरन गुर अमर सुनीजा सिक्या सोहियो जित ही अबसा गुर अमर दास निज जगत पेत सिक्या सो सिर जालप भना जो सिर निवा गुर अमर नित।

0: राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहद, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा, सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहद।

अर सर तीर्थ जे नावह उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसह रंग रोवह चुप भी कर जा, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जावे दे ता खाहे, दीवाने को कलम एका हमा तुम मेल, दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यों।